0: पिचोने रेडी की थी
1: मूड देख चिल करना हैप्पी बिल्ले कर जानी एक दे दुनुमा